दिया तो मिट जाइए या मिटा दीजिए, ये प्यारा सा कलाम अभी आप सुन रहे थे। वाजिदा तबस्सुम का था ये कलाम, जगजीत सिंह की आवाज, और एल्बम इन सर्च से हमने लिया था इसे। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं लोक गीत कजरी, हेमंत कुमार की आवाज है।

श्रोताओं, कजरी के रंग से आप सराबोर हो रहे हैं, तो चलिए एक और कजरी आपको सुनवा देते हैं। मनोरमा श्रीवास्तव ने गाया है इसे, मिर्जापुर कैला गुलजार हो।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। तो लीजिए सुनिए सुरैया की आवाज में मिर्जा गालिब का ये कलाम जिसे संगीतबद्ध किया है गुलाम मोहम्मद ने। फिल्म का नाम भी है मिर्जा गालिब।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम रंग तरंग। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं एक राजस्थानी लोकगीत मारा रंगीलो राजस्थान, और इसे गाया है शोभा गोटू ने, संगीतबद्ध किया है बाबू सिंह ने।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम रंग तरंग। अब आपको सुनवा रहे हैं कबीरदास जी के कुछ दोहे, जिसे गाया है जगजीत सिंह ने और इसे संगीतबद्ध भी किया है जगजीत सिंह जी ने ही।

0: का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं मिश्र संगीत का कार्यक्रम रंग तरंग। आइए अब सुनते हैं उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत जिसे गाया है सुजाता चक्रवर्ती ने।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम रंग तरंग। लीजिए अब सुनिए एक कव्वाली जिसे गाया आशा भोसले और साथियों ने। साहिर लुधियानवी के हैं बोल और रोशन की है तर्ज। फिल्म का नाम दिल ही तो है। निगाहें मिलाने को जी चाहता है।

श्रोताओं, आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश एक और कव्वाली के रूप में इस्माइल आजाद कव्वाल और साथियों ने गाया, इसे शेवन रिजवी ने लिखा, बुलोसरी रानी की तर्ज है, फिल्म का नाम अल हिलाल, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने।

सीधे साधे बड़े होशियार होते हैं। खुदा बचाए हसीनों की तेज चालों से, पड़े किसी कभी पाला न हुस्न वालों से।

इस कव्वाली के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। रंग

मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह। आइए सबसे पहले सुनते हैं आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का गाना आशा भोसले और अनवर की आवाजों में। लिखा है इसे निदा फाजली ने।

आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और अनवर की आवाजों में। निदा फाजली के बोलते खयाम का संगीत था। आइए अब सुनते हैं अधूरा आदमी फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। योगेश के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत है।

0: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
1: क्या बात है।
0: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
2: वो लिखती है जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती है सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती है मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
0: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: बिल्कुल।
2: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

एक मूड, एक कैफियत गीत का चेहरा होता है। कुछ सही से लफ्ज जड़ दो, मौजू से धुन की लकीरें खींच दो, तो नगमा सांस लेने लगता है, जिंदा हो जाता है। बस इतनी सी जान होती है गाने की, एक लम्हे की जितनी। हां, कुछ लम्हे बरसों जिंदा रहते हैं। गीत बूढ़े नहीं होते, उनके चेहरों पर झुरियां नहीं गिरती, वो पलते रहते हैं, चलते रहते हैं। सुनने वालों की उम्र बदल जाती है तो कहते हैं, हां वो उस पहाड़ का टीला जब बादलों से ढक जाता था तो एक आवाज सुनाई दिया करती थी,

0: नमकीन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में, गुलजार के बोल थे, राहुल देवबर्मन का संगीत था।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा,
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ।

0: सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में आप सुन रहे थे दो जासूस फिल्म का ये गाना। आइए अब सुनते हैं मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। लिखा है इसे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

सुरीला सफर तो बढ़ाई अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि इस कार्यक्रम में एक इबारत यानी कि टेक्स्ट हम पोस्ट करते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, और आपको उनमें से उस इबारत में से शब्द चुनना होता है और शब्दों से गाने। लेकिन आज हमने एक अलग खेल किया है, वो ये कि इबारत हमने आपके लिए लिख दी है और साथ में हमने आपसे ये कहा है कि आप भी मिलती जुलती इबारत लिखिए। उसके लिए हमने शब्द भी दिए हैं, लेकिन जरा पहले हम अपनी वाली इबारत आप तक पहुंचा दें। बहुत सारे श्रोताओं ने इबारत लिखने की कोशिश भी की है। यहां हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि जो लोग अब लिख रहे हैं इबारत, तो जरा बहुत संक्षेप में लिखें ताकि हम बहुत सारे श्रोताओं की इबारत को शामिल कर सकें। तो सुनिए, गीत जब शब्दों की देहरी से निकलकर सुरों की दुनिया में आते हैं तो महज गीत नहीं रहते, वे मन की कोई अनकही बात बन जाते हैं। हिंदी के ललित गीतों की यही तो खूबसूरती है, इनमें प्रेम की कोमल आहट है, विरह की नमी है, प्रकृति की छुअन और जीवन के अनगिनत रंग हैं। कभी कोई गीत चांदनी रात में मन का हमसफर बन जाता है, तो कभी बरसात की फुहारों के साथ पुरानी यादों की खिड़की खोल देता है। कुछ गीत जो बरसों बाद भी कानों में पड़ते ही किसी भूली हुई गली, किसी चेहरे या किसी अधूरी कहानी तक ले जाते हैं। कुछ गीत हमारे मनमीत बन जाते हैं। कभी मन एक अजनबी से पूछ उठता है कि ये तो कहो कौन हो तुम, तो कभी आपसे भी किसी ने पूछा है या आपने कभी पूछा है, और कभी किसी की आहट पर खुद से कहता है कोई मतवाला आया मेरे द्वारे। कभी प्रेम की ऐसी खुमारी छा जाती है कि आज मदहोश हुआ जाए मन, ये मन की बातें हैं। तो कभी दिल की बेताबी कहती है बेताब दिल की तमन्ना। नसीम है दोस्तों गीतों का संसार और मन की दुनिया, यही तो गीतों का जादू है। कुछ पंक्तियां हमारे मन के उन कोनों तक छू जाते हैं जहां शब्द भी नहीं पहुंच पाते। तो आइए शब्दों की मिठास और सुरों की रवानी में डूबते हुए शुरू करें ललित गीतों का सुरीला सफर। पर दोस्तों, आज आपको भी लिखनी है चंद लाइनें। नोट करिए ये शब्द, चांदनी रात हमसफर, यादों की खिड़की मनमीत हमसफर, जीवन के अनगिनत रंग, इन शब्दों से बुनिए आप भी कोई इबारत। हमारी इबारत से शब्द और गाने भी चुनिए, इबारत अर्थपूर्ण होने चाहिए। और हाँ, मेरी वाली इबारत को काट पीट कर मत लिखिएगा, नई इबारत चाहिए। तो देखते हैं, भले ही आप दो लाइन लिखें, जैसे कहानी का एक अंश होता है, आजकल तो वन लाइनर का जमाना है कि आप अपनी कहानी को वन लाइन में, मतलब एक दो लाइन में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। हम जो गाना सुनवा रहे हैं उस गाने को सुनिए ध्यान से और आप बताइए कि इसमें हीरो हीरोइन कौन है, और साथ में इबारत तो आपको लिखनी ही है, वो आप लिखते रहिए। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि गाने सुने और गाने सुनने के बाद जहन में कोई इबारत जैसी बात आती है तो लिख डालिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। चलिए अब सुनते हैं ये गाना और आपको बूझना है हीरो हीरोइन का नाम। शर्मिली फिल्म का गाना है, बता दिया हमने फिल्म का नाम, आप बताइए हीरो कौन हीरोइन कौन। गीतकार का नाम भी बता सकते हैं तो जरा बताइए।

शर्मिली फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज में, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, नीरज की रचना थी, सचिन देव बर्मन का संगीत था, पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, गीतकार का नाम। सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द और लंबी तादाद में जवाब दिया, शशि कपूर और राखी, राखी डबल रोल में। एक श्रोता की टिप्पणी है, मुझे तो चांद बहुत सुकून देता है, शायद इसलिए इसको शीतलता प्रदान करने वाला माना जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि कल शाम तीज पर्व पर अपने हमसफर के साथ दूसरी मंजिल की खिड़की में चांद को निहार रहे थे, तब हम बीते बरस के अनगिनत रंगों में सराबोर होकर गुनगुना रहे थे, खुद पे इतराते हुए, चांदनी रात में एक बार तुम्हें देखा है, मनमीत के साथ बिताए पलों को याद करते, कब रात बीत गई पता ही न चला, सहसा चिड़िया चहकने लगी, कितना सुकून था उन पलों में। एक श्रोता लिख रहे हैं कि रात के हम सफर थक के घर को चले, फिर चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, ये तो कहो कौन हो तुम, कोई मतवाला आया, जरा सी आहट होती है आज मदहोश हुआ जाए, बेताब दिल की तमन्ना हो, दिल की तमन्ना थी मस्ती में। क्या बात है भाई, आपने तो बहुत सारे गानों के बोल लिख डाले हैं और भी बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। जरा अब अगली फिल्म के लिए लिखिए कि ये फिल्म आपने कब और कहां देखी थी, एक बात। दूसरी बात, कौन है कलाकार, हीरो हीरोइन, किन पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, और साथ में गीतकार और संगीतकार का नाम। बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लिए, कोई बात नहीं, जो जवाब आपको सूझे वो दी।

लव इन टोक्यो फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र की रचना थी, शंकर जयकिशन की धुन थी और जॉय मुखर्जी आशा पारेख पर फिल्माया गया था ये गाना। हमारे श्रोताओं ने इसका जवाब भी सही दिया और बहुत जल्द जवाब आया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आज की इबारत सुरमयी पुकार है, जब चांदनी रात में किसी गीत के वादी संवादी सुर मिलकर सतरंगी आसमान खोलते हैं, यादों की खिड़की खोलकर जब कोई मतवाला मनमीत द्वार पर दस्तक देता है तब रूह का कोना कोना रोशनी से जगमगा उठता है। जीवन के अनगिनत रंग लिए इन गीतों में उड़ने को अनंत खुला है और डूबने को अतल गहराइयां भी। चांदनी रात में गीतों की तान जब सोए कंदीलों को जगा देती है तब हम सफर के साथ तारों जड़ी ओढ़नी ओढ़कर कोई प्रियतमा पैरों की झांझर उतार बेताब दिल की तमन्ना लिए किसी योगी की तरह गीत की तरंग में ध्यानस्थ हो जाती है। गीतों की मीठी विकल पुकार के साथ पलके नींद की दस्तक पर झपकती हैं और मन को पंख और कल्पना को परवाज देते अमर और मधुर गीतों की अनुगूंज पहरों पहर बनी रहती है। क्या बात है भाई, बहुत ही ललित भाषा में आपने ये इबारत लिखी है और बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि यादों की खिड़की खुली तो जीवन के अनगिनत रंग नजर आए, मनमीत की मीठी यादें मन में हलचल मचाने लगी, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, चांदनी रात में एक बार तुम्हें देखा है, ओ मेरे हमसफर मेरे हमसफर, बहुत सारे गाने इन्होंने लिखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई इन टिप्पणियों के लिए और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमने आपसे कहा कि आप भी इबारत लिखिए तो आप सभी लिख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं लिखी है इबारत वो भी लिखे और जो शब्द हमने दिए हैं उन शब्दों को शामिल करते हुए भले ही दो तीन लाइन की इबारत लिखे हम जाना चाहते हैं। कई बार

होता है कि किसी के भीतर एक कहानीकार छुपा होता है, एक कवि छुपा होता है, जिन्हें बस कहने की जरूरत होती है। तो टटोलिए, कहीं आपके भीतर भी कोई कथाकार तो नहीं छुपा? फिलहाल चलिए अगला गाना सुनते हैं। बूझना है आपको फिल्म का नाम। बहुत आसान सवाल है, फिल्म का नाम बूझना है और फटाफट बताइए। विविध भारती के फेसबुक पेज पर चाहें तो गीतकार का नाम भी बूझ सकते हैं। और ये भी बताइएगा, कभी आपने गुनगुनाया है इस गाने को

फिल्म थी दी ट्रेन और यही था हमारा सवाल। श्रोताओं ने त्वरित जवाब दिया, कुछ श्रोताओं ने बहुत जल्द लिख दिया दी ट्रेन यहां कि मैंने पूछा और उधर उनके जवाब आने शुरू हो गए हैं। इसी तरह से आप फौरन जवाब देते रहिए और हम आपकी टिप्पणियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। जिन्होंने इबारत नहीं लिखी है वो अभी भी कोशिश कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि लंबी इबारत लिखें। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म लव इन टोक्यो के लिए कि ये बड़ा ही बेहतरीन गाना है। इस गीत में किसी प्रिय के आने की खुशी, मन की हल्की सी शरारत और प्रेम की मीठी आहट महसूस होती है, जैसे किसी की दस्तक से अचानक सूना सा मन भी खिल उठे। कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, सुनते ही लगता है जैसे कोई चुपके से मन के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी हो। गीत की मिठास लता जी की आवाज मिलकर प्रेम की ऐसी हल्की सी आहट देती है जो सुनते ही चेहरे पर मुस्कान ले आए। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं जा रहा था मंदिर दर्शन करने, सोचा दर्शन के बाद रोज के कामकाज यानी दुकान खोलने के लिए दर्शन करने के बाद रास्ते में पुराना दोस्त मिल गया। कहने लगा बहुत दिन हुए कोई फिल्म देखने चली, मॉर्निंग शो में राज कपूर जी की फिल्म चल रही है आवारा देखी। लगता है

कोई पुरानी बात इन्हें याद आ गई और जरा बीच में हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगला गाना कौन सा होना चाहिए। कहीं आपकी प्लेलिस्ट में यही गाना तो नहीं जो हम सुनवाएंगे, जरा बूझिए ये भी और अगले दो तीन गाने आप सुझाइए। हम आप जो सुझाएंगे गाना वही गाना आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन हाँ इबारत वाले शब्द होने चाहिए। एक श्रोता ने लिखा है कि वो मेरा मनमीत जो मुझे अनायास एक चांदनी रात में ट्रेन के सफर में मिल गया, एक रात के लिए मेरा हम सफर, ट्रेन की खिड़की यादों की खिड़की बनी, कितनी अनकही बातें जुबान पर आ गईं और ट्रेन रुकी उसको जाना था मुझे भी, अब के पिछड़े कभी न मिलने को। चलिए अब बारी है गाने की, गाना सुनिए और बूझिए जरा फिर एक बार हीरो हीरोइन का नाम, साथ में गीतकार का नाम, देखते हैं गीतकार का नाम सही बता पाते हैं आप या नहीं।

हंसते जख्म फिल्म का गाना था। हमने गीतकार का नाम पूछा था, बहुत जल्द जवाब आया श्रोताओं की ओर से। कैफी आजमी के बोल थे मदन मोहन का संगीत था। कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है, कुछ अधूरी रह गई तमन्नाओं के जख्मों को नगमे अपनी मरहम से नासूर बनने से रोकती है। एक ऐसा ही गाना है, जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला। एक श्रोता ने लिखा है कि खो जाती सुधबुद जब खुलती यादों की है वो खिड़की, इस चांदनी रात की शीतलता अंतर मन को है छूती, वो हमसफर बना मनमीत जब चले हैं बन साथी, जीवन के अनगिनत रंगों की परिभाषा तब है सजती। भाई जो आपने इबारत लिखी है उसके जो शब्द मैंने दिए थे उन शब्दों से गीत के बोल नहीं लिखे, जरा वो शब्द टटोलिए और उसके गीत भी लिख डालिए। अभी हमने आपसे पूछा था कि कौन से वो गाने हैं जो आप सुनना चाहते हैं इस समय, तो कुछ श्रोताओं ने लिखा है और कुछ श्रोताओं ने नहीं लिखा है, तो हम जो गाने आप लिख रहे हैं वही गाना हम अगला सुनवाएंगे। उसके बाद कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं जरा फिल्म का नाम जरूर लिखिए। एक श्रोता की टिप्पणी है कि गीत सिर्फ कागज पर लिखे शब्द न रहकर सुरों की सांसें पाते हैं तो वो सीधे रूह में उतर जाते हैं। हिंदी के सुरीले और ललित गीतों का यही तो जादुई असर है। इनमें कहीं किसी की यादों की महक है, कहीं पहले मोहब्बत की मासूमियत है, तो कहीं तन्हाई का सुकून भरा सन्नाटा है। कभी कोई धुन दिल के सुनेपन को गुदगुदा जाती है तो कभी कोई बंदिश आंखों में गुजरे जमाने की कोई खास तस्वीर सजा देती है। बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणी लिख रहे हैं आप, जरा छोटी छोटी टिप्पणी लिखिए ताकि बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां शामिल हो सके। अब जरा सुनिए ये गाना, आप सभी की ओर से गाना आया है, बताइए फिल्म का नाम और गीतकार संगीतकार का नाम भी। इबारत में कौन सा शब्द है जिसके जरिए ये गाना सुनवाया जा रहा है।

0: आशिक फिल्म का गाना था, मुकेश की आवाज थी, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत था और कुछ श्रोताओं ने बहुत सही जवाब दिया और जल्द जवाब दिया। कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है और अभी भी कुछ श्रोता लिख रहे हैं। तो आप अब बताइए कि अगला गीत कौन सा लिया जाए, मतलब आपके जहन में कौन सा गीत आ रहा है, हमारी इबारत से शब्द चुनकर बताइएगा। और तब तक हम आपकी टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सुरीला सफर और विविध भारतीय सुनते सुनते कभी गर्म कभी ठंडी हवाओं के झोंकों से यादों की खिड़की खुल जाती है और मन पुरानी यादों में खो जाता है। याद आती है वो बहुत सारे प्रोग्राम के नाम लिखे हैं, भूले बिसरे गीत और ऐसे गीत जो जीवन से आज भी जुड़े हैं, जीने का सहारा बनते हैं, जैसे एक दिन बिक जाएगा, नदियां चले चले रे धारा वगैरह वगैरह। भाई भूले बिसरे गीत तो आज भी प्रसारित होता है 7:00 बजे, आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी फिल्मों के गीत न होते तो हम सभी संगीत प्रेमियों श्रोताओं का जीवन नीरस हो जाता। ये बात तो बिल्कुल सच है, हम सभी का जीवन नीरस हो जाता। एक श्रोता लिख रहे हैं कि ललित गीत केवल शब्द और सुरों का मेल नहीं बल्कि मन की अनकही भावनाओं की आवाज होते हैं। इनमें कुछ भाव ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द कह नहीं पाते मगर एक मधुर गीत उन्हें सहज ही दिल तक पहुंचा देता है। और दोस्तों यूं भी होता है कि जब हम एक गीत सुन रहे होते हैं तो मन में बहुत सारे विचारों का झोंका आता है। तो आप बताइए कि आपके मन में इस समय कौन से विचार आ रहे हैं और साथ में आप मन की बात को कब कब सुनते हैं, मतलब मन में जो बातें आपके भीतर आती हैं तो वो कैसे आप मानते हैं। कई बार मन बहुत कुछ कहता है जो आप नहीं करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मन में जो बात आती है लगता है इसे किसी तरह से हम पूरा कर लें। तो एक शब्द आज की इबारत में मनमीत है, उससे जुड़े हुए कौन से गाने हैं जरा बताते चलिएगा। फिलहाल प्रेम पुजारी फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, आपको बूझना है हीरो हीरोइन का नाम और गीतकार का नाम।
1: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

दोस्तों, हमने आपसे मनमीत शब्द से गाना पूछा है जिसमें मीत शब्द भी चलेगा, वो गाने आप बताइए। बहुत सारे श्रोता इबारत लिख रहे हैं लेकिन गाने के बोल फिल्म का

प्रेम पुजारी फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में नीरज की रचना थी, सचिन देव बर्मन का संगीत था और हमने आपसे फिल्म का नाम भी पूछा था, गीतकार का नाम भी पूछा था। एक श्रोता ने लिखा है कि ललित गीतों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी गायकी होती है। ओपी नैयर, रवि जयदेव, एआर रहमान जैसे महान संगीतकारों ने इन ललित शब्दों को ऐसे मधुर धुनों में पिरोया जिससे गीत केवल सुनने तक सीमित नहीं रह जाते बल्कि दिल में असर करते हैं। बिल्कुल सही कहा है दोस्तों आपने। एक श्रोता लिख रहे हैं कि मन का अंतर्द्वंद्व और उसका बोलना मनुष्य के जीवन की एक बहुत ही स्वाभाविक लेकिन गहरी स्थिति है। जब हम कहते हैं कि मन कभी कभी बहुत बातें करता है तो इसका मतलब है कि हमारे भीतर विचारों का एक ऐसा ज्वार उठ रहा है जिसे शांत करना मुश्किल हो रहा है। जब बाहरी दुनिया में हमारे पास बात करने या व्यस्त रहने का कोई साधन नहीं होता तब मन खुद को व्यस्त रखने के लिए खुद से ही बातें करने लगता है। दोस्तों हम तो आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि कब आप अपने आप से बतियाते हैं, कब अपने मन से बतियाते हैं, कब वो लम्हा कौन सा होता है जब आप खुद से गुफ्तगू करते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि चांदनी रात में जब हम सफर साथ हो तो सिर्फ सफर रास्तों का नहीं होता, वो यादों का सफर बन जाता है। यादों की खिड़की से झांकता हर बीता पल कभी मुस्कान देता है, कभी आंखें नम कर जाता है। मनमीत के साथ तो जीवन के अनगिनत रंग और भी गहरे हो जाते हैं। और हमने आपसे पूछा था मनमीत शब्द से कौन सा गीत, बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, किसी ने अभिमान फिल्म का गाना लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है और हमारे पास ये गाना है, तो जरा सुनिए ये गाना और बताइए फिल्म का।

मृग तृष्णा फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी, संगीतकार थे शंभू सेन, और हमारे श्रोताओं ने इसका भी जवाब बिल्कुल सही दिया है और बहुत जल्द जवाब आया है श्रोताओं की ओर से। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि नगमों की दुनिया निराली होती है, कुछ नगमे तराने बन दिल की देहरी लांग ताऊ उम्र साथ चलते हैं, कुछ पुरानी अधूरी यादों को दस्तक दे जाती हैं, कुछ तन्हाई के आलम में हम सफर अतीत वर्तमान और आगामी अनंत काल तक एक सुखद एहसास प्रदान करती है। एक श्रोता ने लिखा है, आपके शब्द हमारी कविता, जीने के अनेक ढंग है, जीवन के अनगिनत रंग है, यादों की खिड़की खोल कर देखो, मेरे मन में चांदनी रात थी तुम भी साथ थे। एक श्रोता लिख रहे हैं कि चांदनी रात थी, खिड़की से झांकती चांद को निहारती, यादों के पन्ने को पलटने लगती है वो, हम सफर के साथ बिताए उस मीठे पल का एहसास मन को आनंदित कर देती है, जीवन में कई सुनहरे रंग खिल उठते हैं। एक श्रोता ने लिखा है, आज का सफर आपके साथ अपने खूबसूरत शब्दों की इबारत है, कितने सुंदर और भावात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, प्रत्येक शब्द के भाव और उनको संगीत के सुर में उतारना, हर भाव को जीवंत होते देखना है, जीवन के हर पड़ाव में इस तरह की बातें आम बात बन जाती हैं, कुछ यादें बन जाती हैं। और भी बहुत कुछ लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, और साथ साथ

में गाए थे हम सफर मेरे और गानों के बोल लिख के इन्होंने माला पिरोई है। तो चलिए अब अगला गीत सुनते हैं और बुझिए जरा गीतकार संगीतकार का नाम। फिल्म है आखिरी दांव। गीतकार और संगीतकार का नाम आपको बताना है।

आखिरी दांव फिल्म का गाना था मोहम्मद रफी की आवाज। गीतकार का नाम हमने पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया, जल्द जवाब दिया। मजरूह सुल्तानपुरी मदन मोहन संगीतकार। और एक श्रोता ने लिखा है वाह वाह वाह जबरदस्त गीत। एक श्रोता ने लिखा वाह क्या गीत है, तेरी एक नजर की बात है। और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं मेरी हर खुशी तेरे दम से है, मेरी जिंदगी तेरे गम से है। और एक श्रोता ने लिखा है कि धर्म पत्नी अगर रूठ जाए तो मुझे फिल्मी गीत गाकर मनाना पड़ता है। और एक श्रोता ने लिखा है नूतन बुआ जी शेखर जी मजरूह सुल्तानपुरी। भाई बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने के लिए लिखा है वाह वाह। तो अगर आपको लगता है कि अगला गीत भी आप करना चाहते हैं वाह वाह और आप सभी की पसंद का हो तो लिख डालिए अगला गीत कौन सा होना चाहिए। हम बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि चांदनी रात में जब कोई अपना हम सफर बनकर साथ चलता है तो यादों की खिड़की से बीते लम्हे भी मुस्कुराने लगते हैं। कभी मनमीत की मीठी यादें दिल को छू जाती हैं तो कभी हम सफर का साथ जीवन को और खूबसूरत बना देता है। इन्होंने आगे ये भी लिखा है किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चलने देना छोड़कर। भाई क्या बात है, गाने तो आप बेहतरीन चुन रहे हैं लेकिन बहुत सारे श्रोताओं ने ये गाना भी चुना है। तो देखिए आपने भी चुना था क्या ये गाना, जरा फिल्म का नाम बताइए और आवाजें किसकी है बूझिए जरा। बहुत ही आसान सवाल पूछा है, देखते हैं कितनी जल्दी जवाब आता है। अगले गीत की फरमाइश भी आप कर सकते हैं, अगला गीत कौन सा होना चाहिए, हम वही गाना बजा

पूर्णिमा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में। गुलजार के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी का संगीत था। श्रोताओं ने फिल्म का नाम सही बूझा, आवाजें भी सही बूझी। मुकेश की आवाज, लता मंगेशकर की आवाज, भला कौन नहीं पहचान सकता है। और अगले गाने के लिए हमने आपसे कहा था कि आप लिखिए कौन सा गाना हो सकता है। बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि अब आएगा चांदनी। हम चाहते हैं कि और जो गाने हैं उसका भी जिक्र कीजिए। ये गाना अब आप अक्सर सुनते रहते हैं विविध भारती से, हम वो गाना सुनवाएंगे जो आप अक्सर नहीं सुनते हैं, तो जरा और गाने भी याद कर लीजिए, शायद आप वाला गाना ही हम आपको सुनवा दें। एक श्रोता ने टिप्पणी लिखी है कि वाह, मैं सुरीला सफर का पोस्ट पढ़ने से अनुमान लगा रही थी कि आज अवश्य आ पाएंगी, और देखिए आपका आगमन हो गया और आपकी बात कहने का अंदाज एक अलग ही स्तर का मन मोह लेता है, और आप सभी का अंदाज हमारा मन मोह लेता है। आप सभी जिस अंदाज में टिप्पणियां लिखते हैं तो हम भी मोहित हो जाते हैं कि कैसे आप इतनी जल्द जवाब देते हैं, कैसे इतनी सारी इबारत लिख लेते हैं, हमें भी अचरज होता है और अच्छा भी लगता है। यही तो है आपका और विविध भारती का साथ, इसीलिए तो सुरीला है और हमेशा हमेशा के लिए है। एक श्रोता ने लिखा है कि चांदनी रात में जब कोई अपना हमसफर बनकर साथ चलता है तो यादों की खिड़की खुलती है, ये वाली लाइन मुझे लगता है बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि मन का मीत प्रेमी प्रियतम या साजन हो सकता है, वहीं दूसरी ओर दिलदार दोस्त या मित्र सखा हो सकता है। और बहुत सारे श्रोताओं ने आज इबारत लिखी है और हमने कोशिश की कि सभी की टिप्पणी आज हम शामिल करें। अब सुनिए ये गीत और जरा याद कीजिए, आपने सोचा था कि ये गाना आप सुन सकेंगे, फिल्म का नाम अगर बता सकते हैं तो बताइए।

फिल्म का नाम दोस्तों हमने आपसे पूछा था, फिल्म थी मुक्ति। मुकेश की आवाज थी, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था। सभी श्रोताओं ने जानकारी बिल्कुल सही दी, हमें लगता है आप सभी की जानकारी बहुत समृद्ध है, इसी तरह से समृद्ध बना रहे। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा वाह वाह ये गाना तो बहुत दिनों बाद सुना, और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है वाह सुरीला सफर सुरीली प्रस्तुति। तो हम भी आपसे कह रहे हैं वाह सुरीली टिप्पणियां, और बड़े अच्छे अंदाज में आज आपने टिप्पणी भेजी है, इस बात के लिए सभी का शुक्रिया। अब आज का सुरीला सफर कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

जाके माथे बिंदिया लगाते बनी मन चली छुप के छुपा के छुपी नजरें बचाते गुप चुप चली

0: सहेली कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
1: आरती श्रीवास्तव का
0: प्यार भरा नमस्कार। कहिए आरती, कैसी हो?
1: बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, क्योंकि चल रहा है

0: गणेश उत्सव
1: बिल्कुल, और हम खा रहे हैं मोदक। भाई घर घर में गणपति बप्पा के आगमन की जो तैयारी हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं और लोग अपने घर पर बुला रहे हैं, बाकायदा भोजन करवा रहे हैं और गणपति बप्पा को याद भी कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, और जब अलग अलग घरों में जाओ ना, जो वो शोभा देखने को मिलती है ना, इतनी सुंदर झांकी सी सजा के रखते हैं गणपति बप्पा को, इतना सुंदर सजाया हुआ है, उनके चारों तरफ कहीं फूल हैं तो कहीं अलग अलग तरीके की उन्होंने सजावट करके रखी हुई है, बहुत अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम लोग हमें बुला रहे हैं और हम उनके घर जाते हैं तो देखते हैं कि इतने सुंदर तरीके से बप्पा को उन्होंने सजाया है, आसपास गुलाबी फूल, कहीं लाल फूल, कहीं पीले फूलों से सजावट की गई है और आसपास वाद्य यंत्र भी रखे गए हैं। कई जगह मैंने देखा सितार रखा है, तानपुरा रखा है, इस तरह से भी जो है उस मंदिर को लोगों ने अपने घर में सजाया है।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगता है देख के, एक सकारात्मक अपने अंदर आते हैं ना, एक ऐसी भावना आती
1: बिल्कुल,
0: है
1: बिल्कुल।
0: कि चलो ये जो त्योहारों के दिन होते हैं ना, जब हम निकलते हैं तो वहां भी जो सड़कों पे भी जाइए तो वहां पर भी इतना अच्छा सब जगह जगह देखने को मिलता है कि सजावट है, दुकानें भी सजी हुई हैं, हर जगह बहुत अच्छा लगता है।
1: लोगों का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है और कहते भी हैं कि जो गणेश जी हैं सिर्फ विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि ज्ञान और विवेक के प्रतीक भी हैं, तो लोगों में जो है उनका बड़ा ही एक महत्व है। हम ना जैसे ही हमारा कोई काम नहीं बनता हम तुरंत गणपति बप्पा मोरिया को याद करने लगते हैं और कहते हैं कि हे गणेश देवता, ये जो भी विघ्न बाधाएं आ गई हैं उन्हें आप दूर कर दें और हमारे जीवन को सुचारू रूप से चला दें, है ना।
0: बिल्कुल,
1: तो हम यही कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के जरिए भी कि भाई जो ये खास दिन हम मना रहे हैं, हमारे जो बप्पा हैं हमारे जीवन के सभी विघ्न हर लें और खुशियों के रास्ते हमारे सभी श्रोताओं के, सभी सखियों और सखाओं के जीवन के खोल दें, ताकि हम अपनी जो राह है जहां जगह जगह पर हर्डल्स हमें दिखाई देती हैं वो न दिखाई दें और हम अपना रास्ता अच्छे तरीके से तय कर लें।
0: बिल्कुल, मीठा खाते खाते है ना।
1: हाँ बिल्कुल, मोदक के साथ साथ और एक सुरीला गीत भी सुन लेते हैं, लेकिन इससे पहले हमारे श्रोता तो जानना चाहेंगे ना आज आप क्या विषय लेकर आई,
0: कौन से विषय पे हमें बातें करनी है, ये भी जानना जरूरी है। तो आज हम लेकर आए हैं जो विषय है वो है खत्म होती जा रही सहनशीलता।
1: ओहो,
0: किस तरीके से हम अपनी सहनशीलता को खत्म करते जा रहे हैं और हम उतावले हो रहे हैं हर चीज के लिए, तो इसके बारे में भी
1: हम तुरंत किसी चीज को पाना चाहते हैं ना। पहले सहन शक्ति होती थी हमारे और अभी ये हो गया है कि हमें किसी ने कुछ कह दिया है तो हम तुरंत उसका जवाब दे देते हैं। पहले सोचते थे, गुनते थे, मनन करते थे कि हमें इसका जवाब देना भी है कि नहीं देना है, है ना, शांत रहते थे, लेकिन अभी तुरंत जवाब देना सीख गए हैं
0: जी। तो और हम सिर्फ अभी मुंह से ही जवाब नहीं देते, हाथ पैर भी चलने लगते हैं।
1: हाँ, ये तो और भी गलत तरीका है। तो ये जो आपने कहा कि सहन शक्ति खत्म हो गई, इस पर वाकई हम चर्चा करेंगे और अपने श्रोताओं से भी चाहेंगे कि वो बताएं कि उनके जीवन कितनी सहन शक्ति बची है।
0: बिल्कुल, वो अपने विचार हमारे साथ साझा करें। साथ ही हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत सुमिता घोष की, जो कि रंग सूत्र की संस्थापक हैं।
1: क्या बात है।
0: और आज हम मुहावरों की दुनिया में लेकर आए हैं कान भरना।
1: बहुत से लोगों का शौक होता है ये, आपको पता है ना कि लोग एक दूसरे के कान भरते रहते हैं। घरों में देख लीजिए, पड़ोस में देख लीजिए, कार्यालयों में देख लीजिए,
0: हर जगह
1: आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके लिए किसी दूसरे का कान भर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: और सामने वाले का कान भी कच्चा होता है यार।
0: बिल्कुल, इसी के साथ में जुड़ा हुआ कि आपके कोई कान भर रहा है तो आप कान के कच्चे हैं, इसका मतलब आप जो बातों में आ रहे हैं
1: उन बातों में आ जाते हैं और उसे सच्चा मान लेते हैं।
0: बिल्कुल, और आज हम बात करने जा रहे हैं हल्की फुल्की बातों के अंतर्गत खाने की अतरंगी आदतों की।
1: जैसे
0: कि किसी को शौक होता है ना कि जलेबी को सॉस में डुबो के खाने का।
1: ओहो, ये तो बड़ा
0: अजीब अजीब सच में मैंने देखा है, शौक होते हैं लोगों के। और इस तरीके की बातों पे हम बात करें, क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं, जो सखियां हैं, जो सखा हैं, क्या उनके अंदर भी इस तरीके की कोई आदत है कि उनको मीठे के साथ नमकीन को मिक्स करके खाना अच्छा लगता है, या कुछ इस तरीके से जैसे मैंने बताया जलेबी को सॉस में डुबा के खाना अच्छा लगता है।
1: अच्छा,
0: तो इस तरीके की अगर आदतें हैं आपके अंदर या आपके किसी जानने वाले के अंदर तो आप हमारे साथ उसको साझा करिए।
1: हाँ बिल्कुल, एक अलग किस्म की ये आदतें हैं जो हर एक में नहीं होती और हर एक इस तरह का स्वाद लेना पसंद भी नहीं करता है
0: जी।
1: तो आप बताइएगा कि आपके घर में आप कोई व्यंजन बनाते हैं या किसी के घर जाते हैं या आपके घर में बच्चे ऐसा करते हो कि किसी चीज के साथ कोई ऐसी चीज
0: अजीब हो,
1: नहीं होती, कॉम्बिनेशन ही नहीं है उस चीज का, है ना। तो इस तरह की बातें हम चाहेंगे आज बहुत अच्छी तरीके से हम श्रोता के साथ सेलिब्रेट करेंगे।

0: आरती ही गीत तो बहुत ही सुंदर था और बहुत कम सुनने में आया है ये गीत,
1: बहुत है ना? प्यारा लगता है ना।
0: हाँ। अच्छा एक बात बताओ आरती, अगर तुम्हारे घर पर किसी जरूरी फैसले पर सबकी राय ली जाए तो क्या मानती हो तुम, वो लोकतंत्र है?
1: बिल्कुल लोकतंत्र माना जाएगा,
0: माना जाएगा।
1: मेरी नजर में तो माना जाएगा।
0: बिल्कुल, मतलब बात छोटी सी है लेकिन लोकतंत्र की जो भावना है हम समझते हैं इसे शुरू हो जाती है, है ना? सबकी बात सुनी जाए और फैसले में लोगों की भागीदारी भी हो, और यही वजह है कि हर साल हम 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाते हैं। और ये दिन हमें ये भी याद दिलाता है आरती कि लोकतंत्र केवल चुनाव और मतदान तक सीमित नहीं होता, ये समानता, स्वतंत्रता, भागीदारी, संवाद और जिम्मेदारी की भावना से भी जुड़ा होता है।
1: बिल्कुल, इसको एक उदाहरण देके समझा सकते हैं लोकतंत्र को।
0: हाँ?
1: बहुत छोटा सा उदाहरण है।
0: हाँ?
1: आप शायद हंस भी पड़े इस पर कि सोचिए कक्षा में पिकनिक के लिए दो जगहों के नाम सामने आए, एक बच्चा बोला मुझे पहली जगह पसंद है और दूसरा बोला मुझे तो दूसरी जगह पसंद है।
0: ठीक है,
1: अगर शिक्षक जो है जो पढ़ा रहा है वो बिना किसी की बात सुने खुद ही फैसला दे दे कि तो ये भागीदारी वाली प्रक्रिया तो नहीं कही जाएगी।
0: बिल्कुल,
1: कि नहीं ना हमने उनकी सुनी ना उनकी सुनी, हमने तो अपना फैसला लागू कर दिया।
0: हाँ।
1: तो लेकिन अगर सबकी राय सुनी जाए और विकल्पों पर चर्चा हो और फिर उचित तरीके से निर्णय लिया जाए तो ये लोकतांत्रिक सोच का एक छोटा सा उदाहरण है। यानी सरल शब्दों में कहें तो मेरी आवाज महत्वपूर्ण है लेकिन आपकी आवाज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
0: ये सबसे बड़ी बात है ना, कि हमारे विचार तो हमने थोप दिए किसी पर लेकिन सामने वाले के विचारों को देखा भी नहीं, लेकिन अगर आपने दोनों विचारों का सम्मान किया यही लोकतंत्र है।
1: बिल्कुल,
0: है ना।
1: बिल्कुल।
0: और मान लीजिए घर में आज तय होना है कि रात के खाने में क्या बनेगा, है ना, होता है ना भाई आज क्या बनाना है, तो पापा कहते हैं भाई आज तो पूरी सब्जी खाने का मन है।
1: हाँ।
0: और बच्चे कहते हैं नहीं नहीं नहीं हमें तो पिज्जा खाना है, हमें तो बर्गर खाना है। हाँ। है ना? लेकिन मम्मी कहती है कि आज तो खिचड़ी बनेगी,
1: हो गया फैसला।
0: ऐसे में क्या होता है कि वो लोकतंत्र खत्म हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: और असंतोष घर में
1: प्रजा में
0: व्याप्त हो जाता है, है ना।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: जी, और लोकतंत्र हमें सिखाता है कि असहमत होना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब हम दूसरे की बात सुनना ही बंद कर दें। तो लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि इसमें नागरिक केवल दर्शक नहीं होते बल्कि व्यवस्था में भागीदार होते हैं, यानी कि मम्मी को सबकी बात सुननी चाहिए। हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, सवाल पूछते हैं, अपनी राय रखते हैं और समाज के बेहतर भविष्य के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं।
0: बिल्कुल, और साथ ही हमेशा ये भी याद रखना चाहिए आरती हमें कि अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं जिन्हें निभाते हुए लोकतंत्र का सम्मान किया जा सकता है। और अब मैं भी यहाँ सम्मान करूंगी लोकतंत्र का, आपसे पूछती हूँ कि एक अंतराल ले लें।
1: बिल्कुल लिया जाए।

0: तो इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से हम स्वागत करते हैं
1: जी।
0: तो हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है, हमारे सखियों सखाओं ने,
1: हमारे जो सखियां हैं, जो हमारे सखा लोग हैं, सभी कुछ बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं। तो एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में हुई थी। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र के महत्व को बढ़ावा देना, लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है और इसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है।
0: बिल्कुल, हमारे श्रोता ने लिखा है कि लोकतंत्र में जनता की सरकार जनता के द्वारा और जनता के हित के लिए बनाई जाती है और लोकतंत्र का यही एक मौलिक पहलू भी है। ऐसे में लोकतंत्र के परिवर्धन और संवर्धन का ये आज का अंतर्राष्ट्रीय दिवस खास मायने रखता है और इसीलिए इसे मनाया भी जाता है।
1: बिल्कुल, और साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र केवल मतदान का अधिकार नहीं बल्कि समानता, स्वतंत्रता, सहिष्णुता और अपनी बात कहने के अधिकार का सम्मान भी है। सच्चा लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब हम दूसरों के विचारों का सम्मान करते हुए अपने कर्तव्यों को भी ईमानदारी से निभाते हैं।
0: बिल्कुल, वही एक

0: लिखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2007 में एक प्रस्ताव पारित करके इस दिन की शुरुआत कर दी थी और इसका उद्देश्य दुनिया भर में लोकतंत्र के सिद्धांतों, मूल्यों और स्थिति की समीक्षा करना और इसे मजबूत करना है। यानी जब हर आवाज मायने रखती है तो लोकतंत्र बेहतर परिणाम देता है और ये खास आज के दिन मनाया जाता है।
1: बिल्कुल
0: है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में हुई और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्र के महत्व को बढ़ावा देना, लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना और इसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया भी जाता है।
1: जी, तो इस समय लोकतंत्र क्या कहता है,
0: यही कि गीत सुन लिया जाए।
1: जी, बिल्कुल।

0: सारी सखियों ने, बहुत सारी महिलाओं ने ख्वाब को हकीकत का रंग भी दिया है।
1: बिल्कुल,
0: है ना। और उसी में एक नाम है सुमिता घोष का।
1: जी, तो कहते हैं ना कि किसी के पास हुनर होना बड़ी बात है, लेकिन उस हुनर को सही पहचान और सही अवसर मिलना उससे भी बड़ी बात है। हमारे देश की गांवों में सदियों से महिलाएं खूबसूरत कढ़ाई करती आई हैं, हाथ करके एक पर बुनाई करती आई हैं, कढ़ाई करती आई हैं और अपनी पारंपरिक कलाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाती आई हैं।
0: बिल्कुल आरती, सही कहा तुमने। लेकिन एक सवाल ये कि अक्सर इतने सुंदर काम को देखकर भी मन में आता है कि क्या इन हुनरमंद हाथों को उनके हुनर का उचित मूल्य मिल सकता है। बस इसी सवाल को अपने काम का आधार बनाया हमारी आज की सखी विशेष यानी सुमिता घोष ने।
1: जी, और सुमिता घोष का जन्म हुआ कोलकाता में और उन्होंने मुंबई से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने अमेरिका के एक विश्वविद्यालय से कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में मास्टर डिग्री की उन्होंने हासिल की। और सुमिता का असली विश्वविद्यालय था उनका अपना देश, यानी कि अपना ग्रामीण भारत।
0: कितनी बड़ी बात है ना।
1: जी,
0: और एक लंबे समय तक सुमिता ने ग्रामीण राजस्थान में एक ट्रस्ट के साथ काम किया और उनका काम ग्रामीण विकास, समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास और विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ काम था, है ना।
1: और इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, सच में जो ग्रामीण भारत को चुनते हैं, सच में वो कुछ कर गुजरने के लिए मन में पहले ही सोच के रखते
0: ठान लेते हैं। मैं बताऊं, मैं एक ऐसी महिला से मिली थी जो एनएसडीएन थी और उन्होंने नागालैंड जाकर वहां के जो लोग थे उनको चुना कि मैं उनको एक्टिंग सिखाऊंगी।
1: अरे वाह।
0: जो वहां का जो ग्रामीण तबका था, जो अशिक्षित था, वहां जाकर उन्होंने एनएसडी पास आउट करने के बाद वहां स्थान चुना और वहां जाकर वो आज भी काम कर रही है।
1: बहुत बहुत बड़ी बात।
0: कितनी बड़ी बात है, जबकि हम एनएसडी से निकलकर सीधा मुंबई की शरण में आते हैं, है ना, और हम फिल्मों की तरफ आते हैं। लेकिन उन्होंने वो स्थान चुना जहां कोई जाना नहीं चाहता और उन लोगों की तरफ कोई देखना भी नहीं चाहता है, लेकिन उन्होंने वो स्थान चुना और वहां लोगों को कलाकारी से जोड़ा। तो ऐसे ही सुमिता घोष हैं जो कि वो सोच रही थी कि कैसी संस्थाएं होनी चाहिए जो समाज में जो असमानताएं हैं और अन्याय है उसे कम करने में हमारी मदद कर सकती
1: है। बिल्कुल। और ये सब सोचते हुए उनके मन में एक विचार आकार लेने लगा था कि गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करना बहुत जरूरी है। किस तरह कारीगर और ग्राहक के बीच सीधा रिश्ता बनाया जाए, परंपरा को आधुनिक बाजार से कैसे जोड़ा जाए, यही विचार आगे चलकर रंग सूत्र बना। लेकिन विचार को हकीकत में बदलना आसान भी नहीं था।
0: बिल्कुल, इतना आसान तो नहीं होता है। जब भी कोई व्यवसाय शुरू करना हो तो सबसे पहले उसकी जो जरूरी चीज है वो क्या है, पैसा।
1: बिल्कुल,
0: पूंजी, है ना। और सुमिता घोष को भी पूंजी की जरूरत थी, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने थी जो थी दान देने वाली संस्थाएं, और उन्हें इसलिए फंड नहीं करना चाहती थी क्योंकि रंगसूत्र एक चैरिटी नहीं बल्कि व्यवसाय के रूप में काम करने वाला सामाजिक उद्यम था।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा बैंक भी ऋण देने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि पर्याप्त व्यवसायिक अनुभव और ऋण के लिए जरूरी चीजें उपलब्ध नहीं थी उनके पास। सुमिता के मन में यही बात चल रही थी कि अब क्या किया जाए। तभी उन्हें एक ख्याल आया, अगर इन्हीं कारीगरों के हुनर से ये संस्था बनेगी तो क्यों ना वो इसके मालिक भी बन जाए।
0: कितनी बड़ी बात उनके दिमाग में आई जो कि हर एक के दिमाग में नहीं आती,
1: क्योंकि
0: है।
1: अपना तो सब सोचते हैं कि हम अपना व्यवसाय खड़ा कर लें, लेकिन जो हमारे साथ काम करने वाले हैं उनको, उनके लिए सोचकर इतनी बड़ी बात सोचना बहुत बड़ी।
0: बिल्कुल, और कि वही मालिक भी बने। हम क्या सोचते हैं, काम तो हम शुरू कर दें, मालिक भी हम बन जाएं।
1: जी,
0: है ना, हमारे विचार में यही रहता है ना ज्यादातर कि मालिकाना हक जो है हम पाना चाहते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि राजस्थान के लगभग 1000 कारीगरों ने आगे बढ़कर कंपनी में 1000 रूपये का निवेश किया, यानी शुरुआत हुई कारीगरों की अपनी भागीदारी से। और ये केवल पैसा जुटाने का तरीका नहीं था बल्कि एक सोच थी कि कारीगर सिर्फ काम करने वाला व्यक्ति नहीं है बल्कि व्यवसाय का भागीदार भी हो सकता है।
1: बिल्कुल, एक बहुत अच्छी शुरुआत करी। और यही रंगसूत्र की सबसे खास पहचान बनी। रंगसूत्र की यात्रा पहले 2004 में एक उत्पादक कंपनी के रूप में शुरू हुई और फिर 2006 को क्राफ्ट्स इंडिया के रूप में पंजीकृत हुई। और रंगसूत्र का उद्देश्य था कि ग्रामीण कारीगरों को नियमित काम और टिकाऊ आजीविका से जोड़ना, साथ ही उनके पारंपरिक कौशल को भारत और दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना।
0: सबसे बड़ी बात ये थी।
1: जी।
0: और यहाँ बात केवल आरती हस्तशिल्प बेचने की नहीं थी।
1: जी।
0: बात थी हुनर, बाजार, सम्मान और स्वामित्व, इन सभी को एक साथ ला देंगे जी। और रंगसूत्र से जुड़े कार्यक्रमों में बड़ी संख्या महिलाओं की थी, तो नीति आयोग के अनुसार रंगसूत्र में 2000 से अधिक कारीगर शेयर होल्डर रहे और लगभग 80% कारीगर महिलाएं हैं। तो कारीगरों की भूमिका सह मालिक, सह निर्माता, प्रबंधक और बोर्ड सदस्य के रूप में भी वहां पर रही है।
1: बिल्कुल, और यानी जो महिलाएं उनकी

0: हाथ में सिर्फ सुई और धागा नहीं आया बल्कि साथ में उनके हाथ में निर्णय लेने की ताकत भी आई।
1: बिल्कुल।
0: और सुमिता घोष के रंगसूत्र पर लिखे एक लेख में एक महिला कारीगर के अनुभव को बताया गया है कि कंपनी के शेयर उसके नाम की उन संपत्तियों में शामिल थे जिन पर उसका अपना अधिकार था। अपनी कमाई से उसके पास अपने बैंक खाते और खर्च के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी आई थी।
1: और यही वो बदलाव था जिसे सुमिता घोष सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानती थी। रंगसूत्र ने पारंपरिक कढ़ाई, हथकरघा और अन्य हस्तशिल्प कौशल को आधुनिक बाजार की जरूरतों से जोड़ने का काम किया और इसका उद्देश्य था ग्रामीण कारीगर केवल स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं रहे बल्कि बड़े ग्राहकों और वैश्विक बाजारों तक इनकी पहुंच बन सके।
0: बिल्कुल। और रंगसूत्र ने बड़े बाजार भागीदारों के साथ में काम किया है। इस तरह एक गांव में बैठा कारीगर अपने हाथों से तैयार किए गए उत्पाद को दुनिया के दूसरे हिस्से के ग्राहक तक पहुंचते हुए देख सकता था। सुमिता घोष के काम को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली। 2016 में उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें ग्रामीण कारीगरों और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े उनके कामों के लिए मिला था।
1: बिल्कुल सही कहा। तो एक तरफ गांव की कच्ची गलियां, दूसरी तरफ दुनिया बड़ा बाजार, इन दोनों के बीच एक पुल बनाने की जो कोशिश या यूं कहें बहुत बड़ी कोशिश, बहुत बड़ा काम सुमिता घोष ने किया, उस पुल का नाम क्या है?
0: रंगसूत्र।
1: और सुमिता घोष ने साबित किया कि अगर किसी महिला के हाथ में हुनर है तो उसे केवल काम नहीं साथ में काम का उचित मूल्य, अपनी पहचान और अपने फैसलों की ताकत भी मिलनी चाहिए।
0: बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि अगर आप किसी हुनर, आपके अंदर कोई हुनर है तो उसको तराशना बहुत जरूरी है ना। और उसको तराश के जब आप अपने लिए उसको उपयोग करते हैं ना, तो अपना ही नहीं साथ में अपने परिवार का, अपने साथ में जितने भी जुड़े हुए लोग हैं या आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, उन सब का भी भला करते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और ग्रामीण तबकों में क्या होता है आरती, महिलाएं एक साथ समूह में इकट्ठी होकर वो लघु उद्योग, लघु कुटीर उद्योग जिसे हम कहते हैं, शुरू करती हैं छोटे छोटे, और उनमें अलग अलग चीजें बनाती हैं, फिर वो सब मिलकर अपना घर भी चलाती हैं। तो इस तरह के भी जो है कुटीर उद्योग गांवों की महिलाएं खासतौर से, लेकिन उनको एक बड़ा व्यक्ति ऐसा मिल जाए, बड़ी सोच वाला, जो उन सबको इकट्ठा करके इस तरह का एक बहुत बड़ा
0: एक मालिकाना हक भी दे दे साथ में।
1: हाँ, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हमने देखी हैं जो 70-80 महिलाओं का समूह इकट्ठा करके गृह उद्योग धंधे शुरू करती हैं और वो वहां पर सभी को जो है अपने अपने तरीके से मालिकाना हक भी मिल जाता है।
0: और ये काम करने से उनके अंदर भी एक आत्मविश्वास आता है ना कि हम भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें शहर जाना पड़े कुछ काम करने के लिए।
1: वो ग्रामीण तबके में रहकर भी
0: हम अपने घर में रहकर, अपने गांव में रहकर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं
1: और आर्थिक रूप से मजबूत हो जाती है। सबसे बड़ी बात है स्त्री का आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए। और अभी क्या जरूरी है?
0: अंतराल।

0: हाँ तो आरती, पता है कभी कभी हम बहुत बेचैन होते हैं ना, तो कागज के दिल पे कुछ न कुछ लिखने लग जाते हैं।
1: हाँ बिल्कुल।
0: और इसी चक्कर में हम साहित्यकार भी बन जाते हैं, लेखक बन जाते हैं, कवि बन जाते हैं
1: जी।
0: और कहते भी हैं कई बार आपका मन बहुत बेचैन है, मन में बहुत सारी बातें हैं, तो उन्हें कागज पे लिख दो, एक डायरी मेंटेन करो, कहा जाता है ना कि डायरी लिखो, ताकि जो सहन शक्ति जवाब दे गई है वो आपकी कलम से आपकी किताब में एक संकलन के रूप में आ जाएगी।
1: और वैसे भी कहते हैं ना, अगर आप लिख लेते हैं ना कोई भी चीज, तो आपका गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाता है, आप थोड़े शांत हो जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो बहुत जरूरी, लिखना तो वैसे भी बहुत अच्छा है,
0: बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप लेखक नहीं भी हैं, तो अपनी सहनशीलता को बनाए रखने के लिए लिखने का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए, ताकि जैसे ही गुस्सा आया, लगा कि कुछ बोलने वाली हूँ, तुरंत कागज पेन निकाला और उस गुस्से को कागज के द्वारा अंकित कर दो, तो एक बार कागज पे वो गुस्सा उतर जाएगा।
1: बिल्कुल, और आप बाद में से इरेज कर सकते हैं।
0: हाँ, उसे मिटा सकते हैं, आप मिटा सकते हैं, फाड़ सकते हैं कागज को कि आपका गुस्सा निकल गया, लेकिन मन आपका शांत हो जाता है। तो इसीलिए कहते भी हैं कि धैर्य रखिए, धैर्य का फल क्योंकि मीठा होता है। और आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में क्या है कि धैर्य रखने का जो कड़ा इम्तिहान है, एक तरह से ये बहुत बड़ी परीक्षा हो जाती है। अगर किसी से हमारी लड़ाई हो गई, किसी ने हमारी बात काट दी, तो हम गुस्से में आ जाते हैं, सड़क पर ट्रैफिक मिल गया तो हम परेशान हो जाते हैं, मोबाइल में हम इतना कुछ लिखते हैं, अगर हमें लाइक नहीं मिले पर्याप्त, किसी ने असहमति जता दी, किसी ने काट कर दी, किसी ने आपको पसंद नहीं किया, तो हम गुस्से से भनभना जाते हैं और लगते हैं क्या जो बात कर देंगे, और बात गर्मा गर्म स्थिति तक पहुंच भी जाती है।
1: बिल्कुल, अक्सर ट्रैफिक में तो अक्सर ही ऐसा होता है ना कि लोग एकदम से लड़ पड़ते हैं कि क्यों आप आगे निकल, अगर कोई आगे निकल जाए, कोई पीछे रह जा रहा है, तो लड़ रहे हैं, मतलब कोई भी किसी भी बात पे हम लड़
0: मतलब
1: सकते हैं।
0: हम अपने वाहन में बैठे बैठे भी गुस्सा निकाल देते हैं और इतने गुस्से में आ जाते हैं कि कई बार हम इस तरह की पढ़ भी रही हैं स्थितियां कि ट्रेनों में दो लोगों के बीच में तकरार हुई और बात कहां से कहां पहुंच गई, यानी सहनशीलता की कमी होना।
1: बिल्कुल, और सहनशीलता का मतलब हर बात को चुपचाप सह लेना भी नहीं होता है। और जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ हों, उस समय आप थोड़ा सा धैर्य अगर हम बना के रखते हैं ना, और दूसरों के बीच

0: चित्कार को सुनते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। कोई भी बात हो तुरंत प्रतिक्रिया देने से ये होता है ना कि हम गुस्से में होते हैं उस समय, तो उस समय हमें पता नहीं होता कि हम क्या कह रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो हम सिर्फ गुस्से में अपनी गुस्सा निकाल रहे होते हैं, तो उस वक्त हम कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकते हैं, तो रिश्ते भी उससे खराब हो सकते हैं, दोस्ती टूट सकती है। तो इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए कि हम जो भी बोलें सोच समझ।
1: इसे तोल मोल की बोल कहा जाता है ना। और आज की जो टेक्नो समय जो आ गया है, इसमें क्या हो गया आरती, कि हमें हर चीज तुरंत पाने की आदत हो गई। एक क्लिक में हमें सारी चीजें मिल जाती है, सामान हुआ कुछ भी, कुछ ही सेकंड से हमें मिल जाता है। एक समय होता था जब हमें सोचना पड़ता था कि हमें जाना है, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, सामान लाना पड़ेगा। अब बस केवल एक क्लिक करने की जरूरत होती है और सामान आपके घर पर आ जाता है।
0: पांच मिनट का अगर सामान हमारे पास 5 मिनट में नहीं पहुंचा तो एकदम से हम गुस्से में आ जाते हैं, फिर हम उसको फिर चिल्लाने लगते हैं जो सामान लेकर आया, कि 5 मिनट से 1 मिनट कैसे ज्यादा हो गया,
1: ज्यादा कैसे आपने कर दिया। सोचिए हमारी सहन शक्ति कितना जवाब दे गई है। तो ये जो तनाव है, काम का जो दबाव है, प्रतिस्पर्धा है, और ये जो रोज की दिनचर्या में इतनी व्यस्तता है, हमारी झुंझलाहट को और हमारी स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रही है।
0: बिल्कुल। और जरा सोच कर देखिए, जब कोई हमारे संदेश का तुरंत जवाब नहीं देता है तो मन में पहला विचार क्या आता है कि आखिर आया क्यों नहीं जवाब,
1: क्या बात
0: लिखा था, क्यों नहीं आया उसका जवाब, शायद मुझे जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। हम अक्सर जल्दबाजी में पूरी बात जाने बिना नतीजे पर पहुंच जाते हैं और यहीं से गलतफहमी शुरू हो जाती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। हो सकता है आपने कोई सवाल पूछा और सामने वाले के पास टाइम नहीं हो, या वो उस वक्त यात्रा में हो या परेशानी में हो, जवाब नहीं दे पाया हो, हमने उसका तुरंत अपने तरीके से उत्तर निकाला और फटाफट उसे अपना ही जवाब दे डाला। और
0: हो सकता है वो नहीं देना चाह रहा उस समय,
1: ये भी हो
0: कुछ सोचना चाह रहा हो, समझना चाह रहा, या उसके बारे में पड़ताल करना चाहता।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी स्थिति हो सकती है। तो सहनशीलता की जो कमी है वो उसका असर हमारे व्यवहार पर ही नहीं पड़ता आरती, बल्कि हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है, हम जानते हैं। और परिवार में छोटी सी बात पर बहस, दोस्तों में नाराजगी और कार्यस्थल पर मतभेद होना, इन सब के पीछे कई बार हमारी ये जो अधीरता है यही जिम्मेदार होती है।
0: बिल्कुल। सोशल मीडिया ने भी हमारी सहनशीलता को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई है। अलग विचार रखना लोकतंत्र और समाज की स्वाभाविक विशेषता होती है, लेकिन असहमति को व्यक्तिगत विरोध मान लेना रिश्तों और सामाजिक संवाद दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। कि अगर कोई हमसे असहमत है तो हमें लगता है कि वो हमारे विरोध में है, हम उसके विचार को नहीं जानना चाहते, वो किस तरह से क्या सोच रहा है वो उसको नहीं जानना चाहते, बस हम सोचते हैं कि ये हमारे विरुद्ध है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और हम उसका सम्मान भी नहीं करना चाहते कि उसके विचारों का हम सम्मान करें। अगर वो हमारे विरुद्ध कोई बात कह भी रहा है तो पहले समझें कि वो क्यों कह रहा है।
0: सबका अपना अपना नजरिया
1: विचार हो सकता है, नजरिया हो सकता है आपके प्रति। और सहनशीलता को बढ़ाना वो मुश्किल काम नहीं है, उसके लिए ये जरूरी है कि हम धैर्य रखें, धैर्यपूर्वक दूसरे को सम्मान दें, सुने, दूसरे व्यक्ति को अपनी बात पूरी करने का मौका दें और गुस्से में तुरंत जवाब नहीं दें, कुछ देर रुकें, सोचें, दूसरे की सोच को समझें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सामने वाला गलत ही हो और हम ही सही हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत ही जरूरी बात ये भी है कि हमें छोटी छोटी बातों को जाने देना सीखना होगा। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता और कई बार हमारी चिड़चिड़ाहट हमारे जो सामने है उसके सामने वाले की गलती से ज्यादा हमारी अपनी थकान और तनाव का परिणाम होती है, जो हम चिड़चिड़ा रहे होते हैं इस समय। तो हम अक्सर सहनशीलता को कमजोरी मान बैठते हैं, जो बिल्कुल गलत सोच है।
1: बिल्कुल, हमें लगता है आक्रामक रूप बनाए रखना ही आज के जमाने में बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं होता। आपकी सहनशीलता बहुत बहुत मायने रखती है आपके लिए,
0: एक अलग पहचान बनाती है कि इतना सब सामने वाला इतना गुस्सा हो रहा है, इतना चिल्ला रहा है ना, लेकिन आप एकदम शांत खड़े हैं,
1: आपने अपनी सहनशीलता को बनाए रखा है, कितनी बड़ी बात है। इसे कमजोरी नहीं समझना चाहिए। हम समझते हैं कि अरे सामने वाला कितना कमजोर है, देखो इतना सुनने के बाद भी चुप बैठा रहा, मैं होती तो ऐसा कर देती, है ना। ये जो
0: चुप बैठना है सबसे बड़ी ताकत,
1: बहुत बड़ी, और सामने वाले को भी हिलाकर रख देती है,
0: बिल्कुल,
1: है ना, आपकी चुप्पी। तो सहनशीलता का मतलब कमजोर होना बिल्कुल नहीं है, और देखा जाए तो अपने गुस्से और भावनाओं को नियंत्रण रखें, आप अपने भीतर एक बहुत बड़ी ताकत महसूस करेंगे। इसके अलावा हम दूसरे को धैर्य से सुने, रिश्तों को समझें और कम बोले, सोच समझ कर बोले तो विवाद भी कम होगा, और जब हम किसी की असहमति का सम्मान करेंगे तो लोगों में हमारा संवाद भी मजबूत होता है।
0: बिल्कुल। और हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर मतभेद को विवाद बनाना भी जरूरी नहीं है, और हर परिस्थिति को अपने अनुसार बदलना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी थोड़ा ठहर जाना, और सबसे जो कहते हैं ना सबसे बड़ा समझदारी वाला कदम होता है
1: वो ये,
0: तो थोड़ा रुक जाइए, सोचिए, थोड़ा समझिए और दूसरे को भी समझने की कोशिश करिए कि वो अगर ऐसा व्यवहार कर रहा है तो उसके पीछे कोई कारण है क्या है। तो उसके बिना आप एकदम से प्रतिक्रिया मत दीजिए।
1: मध्य दें और स्पेस दें खुद को भी और दूसरे के विचारों को भी, ताकि सोचने समझने का मौका मिले। एक श्रोता लिखते हैं कि सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि भीतर की शक्ति है। ये हमें सिखाती है कि हर उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं होता, कुछ उत्तर स्वयं समय दे देता है। सहन करने की अपनी एक गरिमा है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ रिश्ते खामोशी से बच जाते हैं और कुछ सच वक्त के साथ सामने भी आ जाते हैं,
0: है ना। और एक श्रोता जो लिखते हैं कि सहनशीलता का मतलब हर बात सहना नहीं बल्कि हर बात पर रिश्ता को तोड़ना नहीं होता है। कुछ बातों को समझकर कुछ को मुस्कुराकर छोड़ देना ही शायद रिश्तों की सबसे खूबसूरत समझदारी है।
1: और हमारी श्रोता ने बहुत सुंदर कविता लिखी है हमारे आज के जो भी सेगमेंट है उन पर, कि मंदाकिनी जी की मधुर आवाज, आरती जी का साथ, सखी सहेली सजाए हर दिन नई बात, लोकतंत्र का संदेश, सहनशीलता की पुकार, सुमिता घोष संग रंग सूत्र की सुंदर बहार, कान भरना मुहावरे की दुनिया का ज्ञान, खाने की अतरंगी आदतों से मुस्कान, विविध भारती की ये प्यारी सी महफिल, मंदाकिनी जी आरती जी बनाए हर पल दिलकश मंजिल।
0: बहुत अच्छा लिखा है। तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जीवन में कोई भी निर्णय लेते समय सहनशीलता की बड़ी जरूरत होती है, मगर आज के युग में जो चीज सबसे ज्यादा इंसानों के अंदर से खोती जा रही है वो है सहनशीलता का गुण। आक्रामकता को इंसान अपना गुण मानने लगा है। जीवन में आक्रामकता पूरा धागा ही उलझा देती है, ये इंसान सोचता ही नहीं। सहनशील और धीर गंभीर इंसान की छवि अलग ही दिखती है। सो सहनशील बनिए और जीवन को सुगम बनाइए।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि जहां सहनशीलता है वहां प्रेम, सम्मान और रिश्तों की गर्माहट भी बची हुई है, वरना आज की तेज रफ्तार जिंदगी में इंसान के पास सब कुछ है, बस ठहर कर सुनने और समझने का धैर्य कम होता जा रहा है। छोटी सी बात पर नाराजगी, जरा सी असहमति पर रिश्तों में दूरी और अपनी बात मनवाने की जिद सहनशीलता को धीरे धीरे पीछे छोड़ रही है। सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि रिश्तों को बचाए रखने की एक बहुत बड़ी ताकत है।
0: बिल्कुल, एक हमारी श्रोता है जो लिखते हैं कि खत्म होती जा रही सहनशीलता का कारण मानसिक तनाव है, जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लगातार देखने को मिल रहा है। इसका मुख्य कारण मानसिक दबाव और धैर्य की कमी होती है। इसमें सोशल मीडिया का भी काफी प्रभाव है। इसके द्वारा तुरंत मिल रही जानकारी या मिल रहे मैसेज ने पुराने जमाने के खत लिखने के धैर्य भरे दौर को खत्म कर दिया है। मतलब हम जो सोच समझ के लिखते रहे, दो दो तीन तीन दिन में खत
1: पहुंचते थे
0: जी, तो वो मजा इस टेक्नोलॉजी में कहां जो खतों के इंतजार में पोस्टमैन की राह तकते रहने में हुआ करता था। सहनशीलता पाने के लिए तनाव को छोड़कर शांत लहरों पर जीवन की नाव पर सवार होना पड़ेगा।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा लिखा है। और अब हम भी गीत संगीत की नाव पर सवार हो जाते हैं,
0: गीत सुनते हैं।

0: तो आरती, जब हम बात कर रहे हैं आदतों की कि हमारे अंदर सहनशीलता का होना कितना जरूरी है, वहीं कुछ आदतें ऐसी भी हैं जो हमारी हमें हंसी का पात्र भी बना देती हैं, है ना। अभी बताऊं तुम्हें, आज जब मैं सुबह चाय के साथ बिस्किट खाती हूँ हमेशा, आज मैंने सोचा कि नमक का पराठा खा लूं और चाय में डुबो कर खा लूं, है ना, तो कैसा लगेगा। और बाद में मुझे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो पाई, क्योंकि ये कैसा कॉम्बिनेशन मैं सोच रही थी, ये खाने का भला कोई ऐसे खाता है क्या।
1: लेकिन मजा आता है।
0: तुमने खा के देखा है इसका मतलब?
1: बिल्कुल मैंने खाया है।
0: ठीक है।
1: और मतलब हर व्यक्ति का खाने का अंदाज अपना अपना होता है। किसी को गरम गरम रोटी के साथ ठंडी ठंडी दही पसंद होती है, तो कोई चाय के साथ नमकीन की जगह बिस्किट को चाय में डुबोकर खाने का मजा लेता है। कुछ आदतें इतनी अनोखी होती हैं कि सामने वाला देखकर बस यही कहता है कि भला ऐसी भी कोई खाता है। जैसे कि मैं खाती हूँ कैसे, जलेबी को सॉस में
0: डुबोकर।
1: जी।
0: और मैंने देखा हमारी एक नून है, वो पहले दाल पी जाती है और उसके बाद जो चावल है ना वो सूखे खाती है, तो हम उन्हें हंसते थे कि अब आप क्या गोल गोल लौटने वाली हैं कि दाल चावल मिल जाएगा आपका। वो ऐसे ही खाती थी, पहले दाल का कटोरा जो लिया और दाल पूरी पी ली, उसके बाद वो सूखे चावल जो सफेद चावल हम उबाल के रखते हैं उन्हें खाती थी। तो ये भी एक अजीब ही किस्म की आदत है, जिसे हम कई बार जब देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। बच्चों में तो ऐसी आदतें हमें मिल जाती हैं कि सब्जी अलग रोटी अलग, दाल को चावल के साथ मिलाने में वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। कुछ लोगों को मैंने, जैसा तुमने कहा, मीठी जलेबी और सॉस के साथ खाती हो तुम, और कुछ लोग खाने को बहुत धीरे धीरे चबाकर खाते हैं, जबकि कुछ लोग फटाफट एक रोटी को दो ही उसमें खा लेते हैं टुकड़ों में। तो ये खाने के जो तरीके हैं, हालांकि हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए सबसे बड़ी बात कि इसका भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम कुछ भी खा रहे हो लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए।
1: जी बिल्कुल। जैसे कि हमारी एक श्रोता है जो लिखती है कि आज खाने की अतरंगी आदतें देखकर मुझे भी कुछ याद आ गया। मैं जब छोटी थी तब पापा जी के ट्रांसफर के कारण हम लोग दूसरे शहर में आए, और जिस घर में रहने के लिए आए वहां के मकान मालिक के बच्चों को हमने देखा कि वो चावल के साथ दूध का पाउडर खाते थे। उनको देखकर हमें भी शौक चढ़ा पर हम लोग नहीं खा पाए। सच में तो बहुत ही अलग चीज है।
0: बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखती है कि खाने की आदत, भाई आदतें सभी की अच्छी हो ऐसा नहीं हो सकता, और यदि है तो फिर कहने ही क्या। लेकिन अतरंगी शब्द या ये तो कार्यक्रम से स्पष्ट हो सकता है कि भोजन सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं बल्कि हमारे मूड, दिमाग और विज्ञान से गहराई से भी जुड़ा है। भावना और मूड का असर खाने की तीव्र इच्छा अक्सर तब होती है जब हम तनाव में होते हैं या हमें किसी अपने की याद आती है। कई बार खाने के तुरंत बाद घबराहट होती है, बेचैनी महसूस होती है, क्योंकि हमारा पेट हमारे दिमाग से सीधे तौर पर जुड़ा होता है। अगर नाक बंद हो तो हमें खाने का असली स्वाद पता ही नहीं चलता, और 80% हिस्सा हमारी सूंघने की क्षमता पर भी निर्भर करता है। और अचानक कभी कभी किसी खास चीज को देखने से भोजन से अरुचि हो जाती है या हमें कह जैसे उल्टी महसूस होने लगती है। तो जब तक आपकी तीव्र इच्छा नहीं हो आप कोई भी चीज नहीं खाएं, ये ध्यान रखिए।
1: जी। और एक हमारी सखी हैं जो लिखती हैं कि सखियों, कभी कभी हरी मूंग की दाल वाली खिचड़ी में गुड़ डालकर खाया है कभी? बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा।
1: तो इन्होंने यानी खिचड़ी में गुड़ डाल के खाया। तो ये भी हमें करना चाहिए ट्राई, इसका मतलब। और हमारे साथी जो लिखते हैं कि खाने की अतरंगी आदतें, भाई आदतें तो सभी अच्छी ही हों ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन यदि है तो फिर कहना ही क्या। लेकिन अतरंगी शब्द है या अतरंगी, ये इन्होंने कार्यक्रम में स्पष्ट होगा तो अब इनको शायद स्पष्ट हो गया होगा।
0: वही एक श्रोता लिखती है कि हमारे घर वालों की आदत है कि कटोरे में ही दाल सब्जी को मिला के मिक्स करके खाते हैं, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर मेरे घर वालों को लगता है कि जो मेरे घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको कि खाना खाने से इससे स्वादिष्ट लगता है, मतलब एक ही कटोरे में दाल चावल मिक्स करके खाया जाए, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे ही मेरे घर वालों के

0: आदत है समोसे में सब्जी को पूरी तरीके से मिक्स करके खाने की, ये भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और लोग कहते हैं कि एक बार खाकर तो देखो, पर मैं इसे आज तक नहीं खा पाई। इन दोनों ही तरीकों को मैं कभी भी नहीं मतलब ये इसको स्वीकार ही नहीं कर पाए हैं कि कभी दाल भात को साथ नहीं खाया इन्होंने एक कटोरे में लेकर, और ना समोसा खा पाए हैं।
1: अच्छा, तो होता है ना कुछ अतरंगी आदतें ऐसी होती है ना कि समझ नहीं आता कि ये ऐसी क्यों होती है, मतलब इस तरह से हम कैसे खा लेते हैं। दूसरे को जब हम खाते देखते हैं ना तो लगता है कि कैसे खा रहा है इस तरीके से।
0: हाँ, एक लिखते हैं कि हमें कभी कभी बूंदी में सेव मिलाकर खाना अच्छा लगता है। हाँ, ये तो होता है। हाँ। बूंदी और जो भुजिया जिसे हम नमकीन भुजिया उसे मिलाकर लोग खाना पसंद करते हैं, लेकिन हर एक को वो भी पसंद नहीं आता है।
1: बिल्कुल, सबके अपनी अपनी आदतें अलग अलग तरीके से होती हैं।
0: हाँ, एक श्रोता लिखते हैं कि हल्की फुल्की आदतें, अतरंगी खाना खाने की आदत, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि बड़े अलग तरीके से खाना खाते हैं। और जैसे एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे कुछ याद आ गया, मैं जब छोटी थी तब पापा जी के ट्रांसफर के कारण हम लोग दूसरे शहर में आए, और जिस घर में रहने आए वहां के मकान मालिक के बच्चे को हमने देखा कि वो, अच्छा अभी तुमने बताया कि चावल के साथ वो दूध, अमूल दूध इस्तेमाल करके खा रहा था, तो ये देखकर उन्हें बड़ी हंसी आई। उन्होंने इसको खा के देखा लेकिन उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और एक लिखते हैं कि मुझे चाय के साथ कुल्फी चूसना बेहद पसंद है।
1: अरे भैया, चाय के साथ कुल्फी सर्विस तो बहुत सच में बिल्कुल अलग है।
0: हाँ, वैसे मुझे भी एक साथी मिले और उन्होंने कहा कि अभी कॉफी पी है, चलिए अब जो है हम आइसक्रीम खा लेते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद उन्होंने कहा कि चलिए अब गर्म दूध पी लेते हैं। मैंने कहा भाई ये कैसी आदतें हैं आपकी, लेकिन वो आराम से कर रहे थे इन बातों।
1: बिल्कुल नहीं, जिनको आदत होती है ना इस तरह की चीजें खाने की तो उनको कोई परेशानी नहीं होती,
0: लेकिन हमें तो हो जाती है। अभी हमारी श्रोताओं को हो जाएगी अगर हमने उन्हें एक गाना नहीं सुनवाया तो।

0: तो हमारा एक सेगमेंट तो रह गया अभी, यानी कान भरना मुहावरों की दुनिया
1: बात है। हाँ हाँ।
0: तो कान भरना, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि कान भरना मतलब कान में कोई भौतिक चीज या वस्तु को भरना नहीं होता है। इस मुहावरे का अर्थ किसी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत, चुगली करना या उसके प्रति गलत भावना या संदेह पैदा करना होता है। गुजराती में इसे कान भंभेरणी बोला जाता है।
1: अच्छा, वही एक श्रोता लिखती है कि कान भरना यानी चुगली करना, मेरे हिसाब से चुगली करने वाले से ज्यादा गलती चुगली सुनने वालों की होती है, क्योंकि हमसे कोई चुगली कर

0: फंसी ही है और कच्चे कान वाले लोग इसके शिकार शीघ्र बन जाते हैं और इस दृष्टिकोण से ऐसे लोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल। और एक और हमें जो श्रोता जो लिखते हैं कि चुपके से किसी के खिलाफ ऐसी बातें कहना जिससे कि वो सामने वाले व्यक्ति से नफरत करने लगे या उस पर शक करने लगे। ऐसा माना जाता है कि यदि खाने में जहर मिल जाए तो उसका इलाज संभव है, लेकिन कानों में घोला गया जहर रिश्तों को अंदर से खोखला बना देता है और इसका कोई आसान इलाज भी नहीं है। तो क्या कह सकते हैं?
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और कई कई इसका सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है जब हम जिक्र करते हैं कान भरने का। तो अब तो कार्यक्रम का समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम और कान भरें अपने श्रोताओं के।
1: बिल्कुल।
0: तो कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी और
1: आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।